0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बेड सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Jharkhand CID has now summoned three GPSC members for questioning on Monday in connection with the recruitment controversy. Meanwhile, amid BJP criticism over Rahul Gandhi's absence from Ranchi, the Congress party has also now hit back, asking why every issue is expected to be taken up by the leader of opposition.
1: छात्रों के प्रतिनिधियों से जो सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई उस मामले का कोई अभी फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जो पूरी बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है, उन्होंने अपनी मांग को काफ़ी मजबूती से रखा है और जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना है और उसके बाद उनका कहना था कि उनकी मांगें जायज लग रही हैं लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के समक्ष वो गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इनकी जो मुख्य मांगी थी उसमें जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा थी उसे कैंसिल करना और साथ में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करना, ये दो जो मुख्य मुद्दा है ये उस पर छात्र जो है वो डटे हुए थे और मंत्रियों का कहना है कि ये सारी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत करा लिया जाएगा और जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे। तो फिलहाल अभी पहले राउंड की वार्ता हुई है, उसके बाद दूसरे राउंड का वार्ता इस पर जब होगा वो उसकी सूचना सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को देगी और उसके बाद इस पर दूसरे राउंड की वार्ता होगी। लेकिन अभी फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है और जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो अपने कार्यक्रम को यानी कि अपने जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे।
2: छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने तमाम वार्ता को किया, छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा, सरकार सहानुभूति पूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है।
3: पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा, सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी तमाम मंत्री जी जो है सो हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे।
4: बात हुई, हमारी डेलीगेशन गई, ये अच्छी बात है कि हर चीज राहुल गांधी करें, मोदी क्या करेगा, फिर अमित शाह क्या करेगा? सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी जाए तो क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग यहां आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं और सब काम राहुल गांधी करे। जवानों की बात राहुल गांधी उठाए, किसानों की बात राहुल गांधी उठाए, तो आप यहां क्या करने आए हैं? विदेशों में घूमने आए हैं?
5: वो झारखंड हो, वो प्रयागराज हो, वो कोटा हो, वो दिल्ली हो, राहुल जी के लिए हर छात्र महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए हर छात्र महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी जी हर छात्र की बात सुनेंगे।
0: NDTV's मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मराज जोशी हैज एक्सक्लूसिवली स्पोकन टू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी। लेट्स लिसन इनटू द कन्वर्सेशन।
6: If you ask me as an Indian citizen, my opinion on how citizens congregated in Pune, how citizens who are young are congregating in Jharkhand, it is my right to show that opinion, to express that opinion and applaud the conduct of the students of Jharkhand. Why should not I applaud the conduct of the students that congregated in Pune, who were respectful of their country, who were respectful of their flag, who were respectful of uniform personnel? Why would you take away the respect that I express for fellow citizens and young citizens?
7: Because
6: why is my opinion only to matter if I compliment a particular subsection?
7: Because the insinuation seems to be that those at Jantar Mantar are being demonized while comparing them to what's happening at Ranchi.
6: There is no insinuation. Those at Jantar Mantar did beat up police personnel. Those at Jantar Mantar did give naras for Azadi. Those at Jantar Mantar did abuse institutions of India, including the judiciary.
7: But that's
6: anybody also who presumes that you can insult and instigate abuse against the judiciary, against the armed forces of our country, and find favor with the citizens of India, I think has not understood the citizens of India. Padmaja, 64 crore Indians went to vote in the last general election. It does not matter, and I've said this before, it does not matter who we vote for. 64 crore people turned up to vote means they believe in our institutions. We may have voted for different parties, we may have promoted different ideologies, but we all collectively believe in the institution of law. We all collectively take pride in our armed forces. We all collectively take pride in our democratic process.
7: Because
6: ask those 64 crore people, will they stand for abuse of the judiciary? I'm not saying we live in a utopian era.
0: And now on a lighter note, A flying vehicle from the hills of Uttarakhand is now

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम टाइम विद रेशा सहगल और सैंडी हाउ
1: द शो दैट सेट्स द प्राइम टाइम एजेंडा
2: विल बी डीप डाइविंग इनटू दिस टॉपिक टू टेल यू व्हाट्स एट स्टेक.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: लॉन्च कंट्रोल।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन NDTV स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26 बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर NDTV 24/7 बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर NDTV बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवरेज बेस्ट पॉडकास्ट शो ऑफ द ईयर NDTV कंट्रोल ऑल डिफेंस बेस्ट प्राइम टाइम एंकर ऑफ द ईयर सैयद सुहेल बेस्ट फीमेल एंकर ऑफ द ईयर वसुधा वेणुगोपाल बेस्ट ऑन ग्राउंड कवरेज ऑफ द ईयर ऑपरेशन सिंदूर कवरेज NDTV, the network of impact.

0: छात्रों का कहना है कि जो पूरी बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है, उन्होंने अपनी मांग को काफ़ी मजबूती से रखा है और जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना है और उसके बाद उनका कहना था कि उनकी मांगें जायज लग रही हैं लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के समक्ष वो गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इनकी जो मुख्य मांगी थी उसमें जो 14वीं JPSC की परीक्षा थी उसे कैंसिल करना और साथ में CBI इंक्वायरी की मांग करना, ये दो जो मुख्य मुद्दा है ये उस पर छात्र जो है वो डटे हुए थे और मंत्रियों का कहना है कि ये सारी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत करा लिया जाएगा और जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे। तो फिलहाल अभी पहले राउंड की वार्ता हुई है, उसके बाद दूसरे राउंड का वार्ता इस पर जब होगा वो उसकी सूचना सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को देगी और उसके बाद इस पर दूसरे राउंड की वार्ता होगी, लेकिन अभी फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है और जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो अपने कार्यक्रम को यानी कि अपने जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे।
1: टीम के द्वारा तो सूचना मिला है कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे। हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
2: Well, the Jharkhand exam row has remember entered a crucial phase. There's been several rounds of talks that have occurred between the students and the government. This comes after days of protests by the JPSC and the JSSC aspirants in Ranchi. My colleague Prabhakar now joins us on the broadcast from Ranchi to bring us the latest updates coming in. Prabhakar, I believe that a second round of talks is also expected to take place anytime soon. Walk us through the details. Where does the situation stand with regards to the progress that the students and the government have made?
0: See, the second round of talks with the second segment of the students, the protesting students, so they're basically divided into two camps. So the second camp would actually be in indulging in the talks with the government representatives, that is the 4 set of ministers whom the chief minister has nominated. That would happen at 10:30 a.m. today. So yesterday we saw the first round of talks happening with the students. Now the second round of talks would happen at 10:30. We just had an exclusive chit chat with Deepika Pandey Singh, who happens to be the minister and one of the ministers in that 4 minister team, and she confirmed to us that the talk was very positive. It all ended on a very positive note, and the students who were there to indulge in the talk yesterday, they are supposed to give their demands in writing, which they would hand over today. And the government is trying hard to diffuse the situation, or for that matter end this agitation before the 10th, because 10th is the deadline when the students would actually have already announced that they would be marching towards the Vidhan Sabha, and they'll actually ghera the Vidhan Sabha. So that is one agitation which the government would like to avoid. So the government is very positive that within next 24 hours they'll actually be able to meet the demands of the students and diffuse this entire tension and the agitation which is happening here in Ranchi.
2: All right, Prabhakar, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. You know, an important update brought by my colleague right over there, who is now going on to track the situation closely. Of course, the second round of talks is also slated to take place, but like he was mentioning, that this is the second camp of students. This is a different set of protesters that will now be meeting the government. So an important update coming in right there, as there seems to be some progress that has been made between the government and the protesters. Let's now turn our attention to more updates coming in. We have some breaking news coming in at this hour. Let's also take you through it. Crucial updates coming in. Now, in fact, we're learning an important piece of information that cricketer Rishabh Pant has now sought help from the Uttarakhand Chief Minister for land. That's right, the cricketer Rishabh Pant has now asked Chief Minister Dhami to help with the land acquisition. Rishabh Pant has now said that trying to find land in Uttarakhand for the past 3 years. Now, Pant, remember, wants to shift base from Delhi to Uttarakhand. Now, this has also evoked a reaction coming in from the Chief Minister himself, who has assured the cricketer of all possible cooperation. Now, Pushkar Singh Dhami, the Chief Minister of Uttarakhand, has called Rishabh Pant the pride of Uttarakhand. Officials are going to contact Pant, we're learning, over the land request. So, an exchange coming in. Now, remember that cricketer Rishabh Pant is now, he sought help from the Uttarakhand Chief Minister. And my colleague Kishore also now joins us on the broadcast. Kishore, हम ये जान रहे हैं कि ऋषभ पंत ने एक रिक्वेस्ट बनाई है जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कि उनको लैंड एक्विजिशन में उनकी मदद चाहिए. इसमें उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जवाब दिया है. अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि ये क्या कॉन्वर्सेशन है जो हुई है दोनों के बीच में.
3: देखिए, ऋषभ पंत लंबे समय से उत्तराखंड में एक जमीन लेने के लिए तलाश कर रहे थे कि उनको जमीन चाहिए, और उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा हुआ है कि वो उत्तराखंड के नागरिक है और दिल्ली से वो उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं और ऐसे में उनको एक जमीन चाहिए. संभवतः ये जरूर हो सकता है कि ऋषभ पंत जिस तरीके से एक इंडियन क्रिकेट स्टार है और वो उत्तराखंड में एकेडमी भी खोलना चाहते हैं और यहाँ पे रहना भी चाहते हैं, हालांकि उनका घर रुड़की में जरूर है, तो वो एक लंबे समय से जमीन की तलाश कर रहे थे. हो सकता है कि जमीन लेने में या फिर खरीदने में उसको कहीं तरह की दिक्कतें आ रही होगी उनको. तो इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके ट्वीट का जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि आप उत्तराखंड का गौरव है, देश का गौरव है, और ऐसे में आपको जिस चीज की जरूरत हो रही है उसमें मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो आपकी मदद करे और जो भी दिक्कतें आ रही है उनको सॉल्व करे. ये भी आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में ऋषभ पंत सबसे ज्यादा टैक्स पेयर के रूप में उन्होंने अभी टैक्स दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत क्योंकि उत्तराखंड के नागरिक है और देश के एक बड़े क्रिकेट स्टार है इंडियन टीम के, तो ऐसे में अब उनको जमीन तलाश के लेने के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया था उसका मुख्यमंत्री ने तुरंत रिप्लाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो उनकी जमीन तलाश करने में मदद करें.
2: जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स एन अनयूजुअल एक्सचेंज कमिंग इन फ्रॉम विद द क्रिकेटर एंड ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर. थैंक यू सो मच किशोर फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग दोस इंपॉर्टेंट अपडेट्स विद अस. With that, we're slipping into a short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: POK के firing range में खड़े हैं।
5: Just few inches away is POK.
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful.

0: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: नहीं अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: The Gift City in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
4: And this is People's Sansad.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
3: मसाला। लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."

0: प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो IIT दिल्ली से सीखा है। जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा।
1: टुडे मोर देन 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। सिंस 2014, number of universities increase nearly by 70%. More than 650 new universities, 14,000 new colleges, over 4,000 new ITIs, 9 new IIMs, 7 new IITs, and 13 new AIIMS have been established. Medical college have more than doubled and the medical seats have almost tripled. Today nearly 1.4 lakh medical seats are available across 800

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: कौन?
2: बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिर्फ 1 हफ्ते अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा।
2: The gift city in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
3: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
4: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
3: आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: सिनेमा तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: My end goal is judicious use of water. Because one thing I know that if the rainwater do not directly go into the river, if the rainwater is not flowing into the sea, then our life on earth will be better. We have to hold the water. If I call it as catch the rain when it falls and where it falls. It's a very beautiful campaign by Jal Jeevan Mission. The government of India is working on this. Thank you to our Honorable Prime Minister. He is heading this. Or we call it as slow the flow. The flow of water is very fast. Slow it, it'll go inside. So it's very important that we do not allow fresh drinking water going into the sea. We have to hold it. Definitely there are many ways. People make ponds, people make lakes, people make dams. No matter how big dam you make, Bhakra Nangal Dam, Rihand Dam, and Brahmaputra Nadi also we have dam. Whatever dams you make, the biggest challenge is evaporation rate. With the climate change, with the heat island effect, water starts evaporating. When we thought about making dams, the evaporation rate was 6 to 10%. Right now it is more than 24% evaporation rate. And what about the projections by Niti Aayog by 2036? It can touch 40%. Imagine how dangerous thing I am talking about. Humne pani jama karke rakha, garmi mein bhaap ban ke ud gaya. So all the system is failing. So the only system to protect, save water is groundwater recharge. Bhujal, not the surface water, not on the surface. It will all go into the ground through our existing bore wells, or we make the wells. Well system used to be very nice. Divert all the rain water into the well and let it all percolate into the ground. So this is what we had been working. स्पंज गार्डन जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, स्पंज गार्डन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एंटायर सिटी. हम लोग 10 स्पंज गार्डन इमीडिएटली मुंबई में इंस्टॉल करना चाहते हैं.
1: शुभाजीत्स रेसिपी फॉर मुंबई इज हाईली लोकलाइज्ड. यू माइट हैव हर्ड ऑफ द मिवाकी फॉरेस्ट टेक्निक फ्रॉम जापान, बट ब्रिंगिंग बैक ग्रीनरी टू आवर स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायर्स अ डिफरेंट फॉर्मूला. दिस लोकलाइज्ड अप्रोच इज शोइंग रियल tangible results in communities across Maharashtra.
2: Firstly, I am from Royal College and as a Green Club, I am from Green Club as a Vice President of the Green Club at Royal College. Jaisa sir ne aap bataya, currently sab waste water wale system ke bare mein, jaise sponge garden ke bare mein jo bataya, kaafi initiative le rahe hain water ke related. सेव करने के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड है यूज़ करे जा रहे वाटर्स को हार्वेस्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छा मतलब बताया है सर ने उसके बारे में. स्पॉन्ज गार्डन का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इंटरेस्ट आया मुझे भी काफ़ी कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि इससे मल्टीपल टास्क एक टाइम पर मल्टीपल टास्क हो रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनिशिएटिव एंड वो आइडिया बहुत क्रिएटिव है और अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से.
3: करेंगे अपने
2: करेंगे जरूर.
3: क्या मेथड है स्पॉन्ज गार्डन पर, क्या है
2: मतलब बेसिक मेथड, मतलब एरिया रिक्वायर्ड रहता है जैसे कि आपने बताया कि वो इम्प्लीमेंट करने पे हमें वो जो वो हैवी रेन्स होता है उससे भी एक तो वो बचाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से और भी सर ने बताए, तो सर ने जो एक्सप्लेन किया काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, मतलब सब समझा है, एट द एंड देखेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे.
4: दे आर सफरिंग फ्रॉम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, सो वी कैन टेक स्टेप्स टू सेव दैट वाटर. Especially the water which are coming from rain, we can use it. जो पानी already हमारे पास आ रहा है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं वहाँ पर पानी ऐसे भर जाता है, नाले भर जाते हैं, वो पानी कोई यूज़ में नहीं आता, वो पानी वेस्ट हो जाता है. बट वी कैन यूज़ दैट वाटर, और पानी का शॉर्टेज है तो जो जैसा कि सर ने हमें बताया, हम स्पॉन्ज गार्डन और फिर पॉकेट गार्डन और रूट बूस्टर का इस्तेमाल करके हम पानी जो है ग्राउंड में बहुत लार्ज अमाउंट में जमा कर सकते हैं, और फिल्टरेशन के लिए भी एक अलग से स्पेशल क्लोथ है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ अ क्लीन वाटर. और जैसा कि हम जानते हैं बीएमसी हमें जो है क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है, एंड दैट वाटर आर मोस्टली आर यूजिंग इन फ्लश, 40% ऑफ वाटर आर गेटिंग वेस्टेड इन दैट. सो हम उन वाटर को फ्लश में ना यूज़ करके जो वाटर हम सेव कर रहे हैं उनको यूज़ करें. सो उससे क्या होगा, जो बीएमसी के थ्रू हमें पानी मिल रहा है वो बच सकता है, 40% वाटर जो है हम बचा सकते हैं, और जो वाटर हमने प्रिजर्व किया है वो हम यूज कर सकते हैं.
5: आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
6: एक पहाड़ी एरिया पे मैं रहता था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा वाटर शॉर्टेज है और हर साल ग्राउंड वाटर जो है वो कम होते जा रहा है, और इसके चलते मैंने एक कुछ अपने को रिसोर्सेस करना पड़ेगा, इसके लिए सुभरजीत मुखर्जी फाउंडेशन के साथ मैंने जोड़ा और वो सब देखा एक्टिविटीज़, बिकॉज रत्नागिरी चिपलून ये जो अपना जो वहाँ का जो लैंड स्ट्रक्चर है उसके लैंड के नीचे 4 फीट के नीचे बेसॉल्ट है और वहाँ पे पानी जाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे ड्राई बोरवेल्स है जो उनका जो लेंथ है वो 250 फीट 300 फीट 600 फीट तक गया हुआ है और वाटर लेवल ऑलरेडी कम है। तो हमने पिछले साल उनका जो मॉडल लिया और उसका जो हमने स्टडी किया और उन्होंने उनको जो हमको हेल्प की उसके बारे में हमने 31 बोरवेल रिचार्ज किए उनके साथ मिलके, और आज हमने देखा है कि वो 250 फीट ज़मीन के नीचे अंदर पानी पूरा रेन का पानी जा रहा है, तो उसका स्टोरेज 1 CR से ज़्यादा है ज़मीन के अंदर।
0: See, the most important situation right now is we depend upon groundwater a lot, and 70% of the groundwater is already finished. We have taken it out. Our extraction rate is much more than the natural percolation of rainwater. So if the water takes 3 years, 4 years to percolate, but we are taking out so fast that there is no water left. So it's very important that the very system we are using as a borewell to take out water from the ground, we want to recharge it again instantly. Like our rooftop water should be immediately connected to the borewell and let it go into the ground. Because if it's like a bank account, we are only withdrawing money and we are not depositing it. Just imagine you have a bank account which your forefathers have deposited money and you are right now you're only withdrawing. So obviously it's going to be over in no time. So it's very important that we start depositing. It's like a mobile recharge. There's no energy in the mobile, we have to recharge it. So similarly, groundwater recharge is very important, and that part everyone can do. When we are talking of a country, if I'm talking about India, there are more than 30 million borewells which are running dry right now. 30 million is a huge number. So we don't have to invest much. It's all about diverting your rooftop water into the borewell and your work is done. It can be as thing, as initiative, as free. You just have to create a percolation pit. We call it a shosht kadda or a jal tara or a technique where we collect water around the borewell pipe and the water goes in. As simple as that. And we have to make sure that the quality remains best. We don't want dirty water to go into the ground. That's it. So it's very simple. Everyone can do it. As I always say, Har Ghar Jal Sanchay Abhiyan. Grey water reuse.
1: Change often begins with a simple shift in mindset. Just as Shubhajit is encouraging communities to rethink how they use water, VinFast is encouraging motorists to rethink mobility itself. Through its ICE to EV exchange program, owners of petrol and diesel vehicles can upgrade to electric SUVs like the VF7. With special trade-in benefits, additional upgrade discounts, and financing options designed to make the transition to cleaner mobility easier. It's a practical step towards reducing emissions while embracing a more sustainable future.
7: From growing dense urban microforests in a city like Mumbai to rainwater harvesting, his work is proving how sustainability begins with small but fractious steps.
0: Catch the rain when it falls, where it falls, and let it go into the ground. Har Ghar Jal Sanchay Abhiyan, that's what we call. It is all inspired by our Government of India campaign, but that's what we call that. Har Ghar Jal Sanchay Abhiyan.
7: Today's journey reminds us that meaningful change doesn't need governments or policies. It needs just one man to act.

0: रंगीन चाहे जैसे खाओ। 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
4: so many attacks,
3: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine. In France. In Italy.
6: At Srinagar.
4: I am Vikrant.
7: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा।
1: टुडे मोर देन 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। सिंस 2014 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज नियरली बाय 70%। मोर देन 650 न्यू यूनिवर्सिटीज, 14,000 न्यू कॉलेजेस, ओवर 4,000 न्यू ITIs, 9 न्यू IIMs, 7 न्यू IITs एंड 13 न्यू एम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। मेडिकल कॉलेज हैव मोर देन डबल्ड एंड द मेडिकल सीट्स हैव ऑलमोस्ट ट्रिबल्ड। टुडे नियरली 1.4 लाख मेडिकल सीट्स आर अवेलेबल अक्रॉस 823 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री।
2: Shifting our focus to breaking news that's coming in, there is a statement that's just come in by the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, who has said and hit out at the Congress, in fact, by saying that the centre and the BJP do not agree with the policies and the stance that the Congress is taking. In fact, he's gone ahead to say that the steps taken by the former Prime Minister Indira Gandhi ji, she was blunt in her admitting her actions and that she had taken. Now the Congress party is not even realizing their own errors and shortcomings. So that's a scathing attack that's coming from Kiran Rijiju. Aishwarya is joining me on the broadcast. Aishwarya, talk to us about the context of Kiran Rijiju's tweet. Is it in the context of the delimitation bill, which is being linked to women's bill that's going to come up in Parliament next week?
3: Well, certainly, it's the Twitter war that was going on since morning between Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of Opposition Rahul Gandhi over the delimitation bill. Rahul Gandhi clearly hitting out at the centre, stating that in the shadow, in the backdrop of delimitation, the woman reservation, the centre wanted to bring in the delimitation bill. If the government really intends to increase the reservation for women, then they should get the bill passed that was earlier tabled back by the Modi government, to which the Congress party unanimously supported it. It is the Kiran Rijiju has hit out back at the Congress party by putting out a video of Indira Gandhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
0: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
0: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
0: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
0: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?
2: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
4: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. We're getting in breaking news where we learn that an 18-year-old has been swept away in an open drain, and this happened in the national capital. The 18-year-old fell into the drain amid heavy rainfall. The NDRF, the divers have conducted a search operation for the missing youth. The residents have flagged unbarricading of the drain nearby, and the locals claim that there was an open drain issue that was raised multiple times with the authority. My colleague Anushka has spoken with the victim's father. Let's listen in.
1: ये कब की घटना है और किस तरीके से हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि उनका पैर?
2: घटना है करीब 8 बजे की, कल 8 बजे से आ रहे थे 62 सेक्टर 62 नोएडा से आ रहे थे, तो बोले पापा मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, उसके बाद पता नहीं चला ये पुलिया से निकले हैं और पैर फिसल गया है और बैग मिला है, बैग फेंक दिया, फिर अपने पास निकलने की कोशिश की, फिर बच्चा नहीं मिला कल 8 बजे से।
1: कितने घंटों से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से अथॉरिटीज़ को बताया गया?
2: ये मैंने कंप्लेंट की है तो 10-11 बजे कल छानबीन हुई, थोड़ी बहुत चले गए, फिर गोता वाले 11 बजे लमसम में आए हैं, कंप्लेंट जब इधर उधर की तब उसके बाद छान, करीब 22 घंटे बाद छानबीन चालू हुई है कल के बाद।
1: 22 घंटे के बाद लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए पहुँचे?
2: हाँ 22 घंटे के बाद।
1: कहाँ काम कर रहे थे?
2: 62 में सेक्टर 62 में। हाँ
1: किस चीज़ का काम करते थे?
2: एंट्री रूम में करते थे, ऑफिस में। हाँ ऑफिस में काम करते थे। अब मेरा यही मांग है कि मेरा बेटा कैसे भी मिल जाए, जैसा भी शरीर उसका मिल जाए, बस मेरा यही सरकार से मांग है।
0: Time fast to slip into another quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue.
3: थोड़े में ज्यादा

0: क्लास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: The gift city in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ?
1: 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: पीपल्स संसद बिटवीन जंतर मंतर एंड झारखंड इज द डिस्टेंस सो लार्ज
2: व्हेन वी वेंट देयर माय यंग कॉलीग्स वेंट देयर सो दैट व्हेन पीपल आर सिटिंग इन धरना
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा।
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: देश का टायर जेके टायर।
1: ऑक्टो रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका
3: राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: India has firmly rejected the remark, saying that the internal legislative matter of the country is not the business of a Republican leader.
1: It is not, Christian centric. It is actually, it will affect the Christian, it will affect the Muslims, it will affect even the Hindus. In fact, minority serves the majority in these types of areas, be it a college, school or a hospital. So all that it was pointed out. And another thing is, no hearing is provided under the rules. Where the property is going to be waste, there should be at least a minimum hearing. Notice should be there. Nothing is there. Mere cancellation will automatically waste with the authority. That is so draconian nature. It violates fundamental rights.
2: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
0: Prime Minister Narendra Modi has delivered a message to students at the IIT Delhi convocation ceremony, urging them to stay curious, embrace change and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi, meanwhile, said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
3: आपके परिवार के लोग proud feel कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है. क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं. आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं. मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता. सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी. जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं. दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा. जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे. और आपने यही तो IIT दिल्ली से सीखा है. आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है. इस मजबूत नींव पर

0: ये तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: change and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi meanwhile said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
1: आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा।
0: Cricketer Rishabh Pant has made a personal appeal to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, saying that he wants to move his base back to the native state. Pant said he loves Uttarakhand and is trying to buy land to shift back home. He also sought Chief Minister's help in the land acquisition process. Responding to Pant, CM has called him the pride of Uttarakhand and said he had brought glory to Devabhoomi. Chief Minister also said he has instructed officials to provide full cooperation as per the rules of the state. India has hit back at China's repeated attempts to rename places in Arunachal Pradesh. The Survey of India has now identified 27 locations in the state using their official Indian names on its latest map. The locations include mountain passes, lakes, settlements and other geographical features. Among them are strategically significant areas such as Longzhu and Thangla. The move comes after Beijing has repeatedly issued its own names for places in Arunachal Pradesh. India has consistently rejected China's claims over the state state, calling its renaming exercise baseless and fictional. Slipping into a very short break, news and updates continue here. Stay tuned, stay with us.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: even the Hindus. In fact, minority serves the majority in these types of areas, be it a college, school or a hospital. So all that it was pointed out. And another thing is, no hearing is provided under the rules. Where the property is going to be waste, there should be at least a minimum hearing. Notice should be there. Nothing is there. Mere cancellation will automatically waste with the authority. That is so draconian nature. It violates fundamental rights.
1: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
2: Prime Minister Narendra Modi has delivered a message to students at the IIT Delhi convocation ceremony, urging them to stay curious, embrace change and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi, meanwhile, said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
3: आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा।
1: Cricketer Rishabh Pant has made a personal appeal to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, saying that he wants to move his base back to the native state. Pant said he loves Uttarakhand and is trying to buy land to shift back home. He also sought Chief Minister's help in the land acquisition process. Responding to Pant, CM has called him the pride of Uttarakhand and said he had brought glory to Devabhoomi. Chief Minister also said he has instructed officials to provide full cooperation as per the rules of the state. India has hit back at China's repeated attempts to rename places in Arunachal Pradesh. The Survey of India has now identified 27 locations in the state using their official Indian names on its latest map. The locations include mountain passes, lakes, settlements and other geographical features. Among them are strategically significant areas such as Longzhou and Thangla. The move comes after Beijing has repeatedly issued its own names for places in Arunachal Pradesh. India has consistently rejected China's claims over the state, calling its renaming exercise baseless and fictional. Slipping into a very short break, news and updates continue here. Stay tuned, stay with us.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?